अजीबर को देश फेसबुक तला रे मुसर रोगले दिमाग करी के ना हिफाजत हटक रोगला ला हिफाजत हटक फर्स्ट टाइम प्रोग्राम की मुसर रोगले सलामुना वालेकुम सलाम हर कले तवे इचे सलाम एंड गुड मॉर्निंग लला लला उजाला हटक ढेरा मदना ओ जी दे सरसरा मोहम्मद हमज चकुंदा आ रोगला दा नो इचे फ्रॉम मूसा वाली

हजिज इनर कॉस्मेटिक्स के मुंगसरा ब्यूटी क्रीम मुंगसरा सनब्लॉक मुंगसरा स्क्रब और मुंगसरा फेस वॉश वर्सरा रगल दी मुंगसरा डगरमा को पाउडर हम

0: जी द नेक्स्ट कॉलर कसु सुखते है ना पासाउ सेट तसु कसु कॉल के सुखते हो सभी लगुड़ी जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम खोरे सो को दिकम जोना नहीं नतरा
1: तो बड़ा की मन वासी रहे एक बार कने फरमाइश में देख तेरे डाके जस्ट अप्लीक
0: जी खोरा के वशया ओ मिलर छ प्ले बुशी हो उस दे टाइम मंदी यो सॉन्ग्स बिल्कुल पो डेस्कटॉप मख्त बता दो प्ले कोला में खुद तो काल रोग मुश द काल पहला टाइम के सुखती वे अब वो गुस्सा के बेचारा गाले वाला गोला मुश्किल न चगो जी खोरा के सो की मगाना ڈیر شکریہ دکال کولو

खूबसूरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज़ रेडियो अमन 88.4 का रख, जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।

0: तड़ाई माशे में जी दार तो ये जी पता शापर सी देता शाय उपस्थित थी
1: जनाती से तारखे ना पर शापर के हमें इश्मा वाशिंग पाउडर उपस्थित थी
0: इश्मा वाशिंग पाउडर मड़ाई में जी मोह कोरता नेशनल और मल्टी नेशनल कपने वाल वाशिंग पाउडर बड़ी भी कुर्श अक्सर गिलार तक की जी दस रंगे सरा प्रोवरे
1: बिल्कुल तारखे ना दा गिले वे हर वक्त मुताहा कुर्श डाले हो चे कराना में कोरता इश्मा वाशिंग पाउडर उड़ल से रिकड़े दी उस टूल कुर वाला नकवाशोल दी
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सर अब इश्मा वाशिंग पाउडर से सदा से खास खासियात थी
1: तारे खाना इश्मा वाशिंग पाउडर खास खासियात दागा दी चे कपड़े सब यूशली को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाकर सजूद की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वाशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सब ही पवात लोसीना न कर पाई
0: शाह मिस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाय दार तो दाओ मोता चेरता मिला जी
1: तारे खाना दाओ तो दफ बने गलशे आंद्रोन ला की गेट जान से बे गाले पर शे मार्केट से देश में मेन डिस्ट्रीब्यूटर हाफिज जहीर साहब सर उधर से मिला विजी

प्रकाश से गाता मशीला मशी और मैसेज बिल्कुल पांडे पांडे और रहूं दी देर से तो मनना शुक्रिया दे मैसेज और विधि के देरा देरा मनना मनना और सरकल रो से बोल तो से हां यो जहान मन शुक्रिया मुकी बिल्कुल और विधि के बर्ताव से यो यानी जबरदस्त है और से इधर से लगाऊं प्रोग्राम से दे गदीन का प्रोग्राम बिल्कुल दिमिरा और लिसनर यानी इस वक्त बड़े भाई साहब और विधि की कहां प्रोग्राम रे जरूर यो ने मैसेज मिस कॉल रोके चरमिश खान नन गड़िंदर सर के मनना मनना मनना मनना बिल्कुल अर्जिंग प्रोग्राम से सब की कहना प्रोग्राम से बिल्कुल यानी सॉन्ग हेदर था लगे हुई और कॉल ने बड़ा बिल्कुल नंबर से किन्ने कहना 09272912 मैसेज पर आ रहे के उनके आ रहे के नंबर स्पेस बेस नंबर अपन नाम और पहले लेके नंबर को सेंड हो के 8583 से कला मैसेज और रसीद कहना और बिल्कुल दगा शाय तेज तक प्रोग्राम शो गडीन गडीन गडीन दर सर के और विधि के प्रोग्राम से सॉन्ग हेदर बने और बनने प्रोग्राम पर किम सॉन्ग से किम निकला किम सिलेक्शन करा देखे ना बिया बिया ना ये नहीं किसी भी बिल्कुल सुमरहा दिन में दर्दिंग की दिन सुमरहा दिन में दिस मर दी आगे तो उधर ये कहना से बिल्कुल प्रोग्राम से अवाला वाला सॉन्ग से किम निकला वाला सॉन्ग बिल्कुल कटोले दस गमजन शांत सॉन्ग भी नो गमजन शांत सॉन्ग की लिस्ट दे दिया अक्सर है मन प्रोग्राम से द गडिन को हमेशा वर्त होते हैं मेरी भाई प्रोग्राम दे बिल्कुल मौज मस्ती भी तेज भी खुदा सांतरे जी की मिल गया पदेश तोल द सार सॉन्ग डर जियोत खान की वो जे सार सॉन्ग सर मेरा तेज भी जे मिल गया ओहो ओहो क्या किसे बदल भी आशा पाई दो डेर जो तमन्ना सभी लोग चिमुस तरह सिग्नल लगता सभीला अल्लाह दे अल्लाह दे अल्लाह दे ये क्या ना ये चला दे रहम रोबन होगी सही तो ओए होए ना बिल्कुल फजल खान मरोत वर सर वर सरा रहमान दावलत खेल बिल्कुल सॉन्ग सर सरोरे जोश की बजर था उसे ये नहीं ये नहीं ये नहीं कैसा सॉन्ग रे

बिल्कुल अर्थिंग प्रोग्राम से कलरों से बोन हर रोनी पजीर 927 200 बिना देने लाइट पाल उठती बना मैसेज है बरोनी ना बरोनी ना बरोनी ना दी उसे क्या कहना चाहिए क्या ना चेतन भी खापा ना शक्य ना नतास लिस्ट में नतास अर्थिंग की वोड क्या ना वह जब तक आप अकेला वहाँ क्या पचार बजे रोशे क्या कहना मिर्जो ब्याह अंदर तावीशी साइड हो मानना तो उसे मिलता बिल्कुल पटवाड़ों से सालोमीना सालोमना सालोमीना की मुझे बिल्कुल अर्थिंग प्रोग्राम से गाँव में मशीन है हमारे जो सॉन्ग हर सरोवर वे ओवर सरोवर

जी बिल्कुल अर्थिंग प्रोग्राम से सुमरहा लिसनर जी सुमरहा समय दी आगे ते बिल्कुल टोला चिकी मां मैसेज रोल जी मैसेज नो शामिल हो जा जी कलर से बने तो हां मकावर की कहना अभी जे मां लश के लश के लश के लश के साथ लश के साथ आहा।

चल रंग पानी कवि दखले वजह है हेलो सलाम भाई हाउ आर यू सलाम वेर करो शिकान तक सगा डकदा ओना दे बहा ता टोल लिसन अस्सलाम वालेकुम सलाम ओडे रशी तो मनन शुक्रिया ओ वेचे सरा वर सरा बिल्कुल दगा यू सलाम देखला देखे ना दगा बिल्कुल देमो प्रोग्राम चकिम लिसनर दी पता बिल्कुल से सलाम न पास का होगा ना ओ ना ना गिन जोरीन हम लशना ऑटो ले सिस्टम ना मेचे डेर जुता गिल्ला दो ओ मुकाल न देखले वो दे मुस्ता सलाम हां न कई ओ भाई दादा तो डाले अच्छा भाई दादा टोले बेवफा सिस्टर तर डाले भी ओ तो से ना मैं दा से तमनावा जे ओ सलाम हो न कवे आई एम अमर हट के ना अमरा फ्रॉम तक ना सरते डेर जुता मन यो जहान हो ना ओ जहान हेलो हाय हेलो हाउ आर यू शो इज वेरी नाइस स्वीट बिल्कुल मोस्ट वेलकम नाइट शो मिति ब्रो आई एम मलाल फरेदी एंड मरियम जानी फ्रॉम वाना भोसावा क्वारा शो के वे एमओ अच्छा सर डेर जो तमन्ना यो जहान वंदना वैसे जार शुदर डेर जो तमन्ना वे सलाम टू मैक नूर एंड अनियास मसीब रीब अमरवा तो दो स्पेशल सलाम वालेकुम सलाम डेर जो बेहद अमरन बेहद अमरन बेहद अमरन वैसे अस मसीब वो मंडान में ना ओके गुड नाइट डेर जो तमन्ना जो सोना वो डेर जो बेहद अमरन ओवे क्या ना वैसे सब यही सब यही شکریہ ملک الماسیتا السلام علیکم سلام ہم نشنا وزیر ڈیر جو تمنا پروگرام سے مسکول بے حد بے حد بے حد مننا اور سر وچ السلام علیکم شاہ جرمنی بیا مسکول بے حد مننا یو جہان پروگرام سے مسکول یو نڑے مننا